किसे उह लगा दो। अन्न देवता पानी देवता संतर देवता नू पंजमा पाय कृत दा हुआ पक पवित पापी सो तन गड्या तुका पंजा तित

चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है के साहब मन विसारी है, अपन भी अपना भी वाचवा।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत

अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए इके उत्तम पंथ सुनयाओ गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरनाई तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे दंडौत बंदन अनकवा सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना का पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन किया। पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द राही मनुखी दुनियावी जीवन नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 560 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀਲੇ, ਰਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ? ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा, वो अंदरों बड़ा परेशान होएगा। इहदा मतलब बाहर दा हासा केवल एक बाहरी दिखावा है, और जिन्ना असी बाहरों हसदे हाँ उन्ना ही अंदरों असी रोंदे भी हाँ। एक दिन शायद आप जी नाल जिक्र कीता होवे, हर घर दे विच बजुर्ग छोटे बच्चे नूं रोंदियां देख के हसदियां देख के एक गल जरूर कहिंदा, तुसी सारे परिवार बच्चियां वाले हो, छोटा बच्चा जदों बहुत ज़्यादा खिड़ खिड़ के हसदा, बहुत ज़्यादा खिड़ खिड़ के हसदा, तो घर दे विच बैठा बजुर्ग पता की कहिंदा, कहन लगे इन्ना हसना जिन्ना तू हसेगा उन्ना तेनू रोना भी पाएगा। और वाकई इस तरह हुंदा, वो जिहड़ा खिड़ खिड़ के हस रहा हुंदा बच्चा थोड़ी देर बाद उही रो रहा हुंदा। साड़ी भी हालत यही है कि बाहरों असी हस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, दिखावा है, पर अंदर किन्ना कु रोना सांभी बैठे हैं, अंदर किन्नियां परेशानियां किन्ना दुख लई बैठे हैं, कि बाहर दे चेहरे तो बाहर दी अवस्था तो पता नहीं लगेगा। इसलिए सतगुरु जानते हैं, महाराज कहिंदे जे तू सदीवी सुख लेना चाहुंदा है तो वह तैनू सच्चे शब्द विचों मिलना है, होर कितों नहीं मिलना, सच्चे नाम दे विचों तैनू मिलना। जे तू सुखदाई होना चाहुंदा है, सुखमई जीवन जीना चाहुंदा है, फिर वो इक्को ही तरीका है, हर को नाम सदा सुखदाई। हरी दा नाम ही तैनू सदा सुख दे सकदा है, तेरे मन नू शांति, तेरे मन नू टिका दे सकदा है, तैनू आत्मक तल ते सुकून मिल सकदा है। हुण जिस सतगुरु महाराज ने सानू ये दसिया, उस सतगुरु तो वारे जाइए, असी ऐसे गुरु महाराज तो सदा बलहारे जाने। सतगुरु ने सानू बाहरों नहीं, साढ़े अंदरों दे बंधन कट के सानू अंदर दा सुकून दिता है। असी बाहरों ते आज़ाद हो गए, बाहरों ते असी आज़ादियाँ माणदे हाँ, हर साल वो आज़ादी का दिन भी माणदे हाँ, पर कि अंदरों अंदरों ते हजे भी गुलाम हाँ, अंदर ते वो बंधन हजे साढ़े खुले नहीं। पर सतगुरु है जो साढ़े अंदर दे बंधन नू कट दे। महाराज कहिंदे ने बलहारी सतगुरु पूरे, मैं सतगुरु पूरे तो बलहारे जावां, बंधन काटे सगले मेरे, जिन्हें सारे मेरे अंदर दे बंधन कटते। जे असी बाहरी तल ते देखांगे बंधन तो पै रहे ने, कटे नहीं जा रहे, ये वहम भरम ये भी तो एक बंधन ही है, ये शगन अपशगन इन्हां बंधनां विच भी असी जकड़े हुए हैं। सतगुरु महाराज ने सानू बहुते टेढ़े मेढ़े रस्ते नहीं दसे, सानू इक्को ही रस्ता दसिया भी जे तू सदीवी सुख लेना चाहुंदा है तो इक्को ही कर्म कर, बहुते कर्म करन दी लोड़ नहीं। जे तुसी मन दा सुख बाहरी तल तो लेना चाहते हो, फिर बाहर दे लोग तो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते दसते हैं, बड़े वहमां ते भरमां च पाउंदे आ, लोग होर परेशान हो जाते, वो कहिंदे असी ते पहले ही बड़े परेशान हाँ। सतगुरु जी महाराज कहिंदे तैनू मैं सीधा रस्ता दसदा, अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। बस सीधा रस्ता है, सानू आसे पासे देखण दी लोड़ ही नहीं, होर कोई कर्म करन दी लोड़ ही नहीं। महाराज कहिंदे सीधा मार्ग है, सीधा रस्ता तू तुरिया चल, सत संग कर ते परमेश्वर दे नाम दी कमाई कर, जिदे नाल तैनू सुख तैनू सुकून मिलना है। मैं सतगुरु तो बलहारे जावां,
बंधन काटे सगले मेरे, जिस सतगुरु ने मेरे अंदर दे सारे बंधन कटते। बलहारी गुर अपने देवहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। ऐसे सतगुरु तो मैं बलहारे जावा, सदके जावा। बलहारी गुर अपने अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की बाणी, अवगुण मेट। सतगुरु जी जे सदीवी सुख सानू दवाउंदे आ, पर वो मिलना किदां? सतगुरु जी ने मेरे अंदर दे अवगुण मिटा दिते, खत्म कर दिते। गुण प्रगटी आए, मेरे अंदरों गुण प्रगट करवाते। अपने आप नहीं सी होने, अवगुण अपने आप आ सकते हैं। उन्होंने कट्ठे करन दी लोड़ नहीं, मेहनत करन दी लोड़ नहीं। तुसी चलो, तुहानू सोसाइटी संगत इदां दी मिले, तुहानू अवगुण अपने आप। पर गुण लैण वास्ते सानू अरदास बेनती करनी पएगी, गुण लैण वास्ते सानू नाम दा अभ्यासी बनना पएगा, फिर जाके ये गुण आने हैं। मैं सतगुरु तो बलहारे जावा, सदके जावा। जिस सतगुरु ने मेरे अंदर दे अवगुण मिटा के मैनू मेरे अंदरों शुभ गुण प्रगट कर दते, और वो शुभ गुणा दे सहारे मैनू अंदर जिहड़ा सी वो सदीवी सुख मिल गया। सतगुरु की वडियाई है, वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे। जिहड़ा कारज मेरे तो रास नहीं सी हुंदा, वो अज कारज रास हो गया। किदां होया? सतगुरु नू मिल के, सतगुरु दे राही। वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक कौ गुर पूरा भेटे ओ सगले दुख बिनासे। परे होया किवें? जदों मैं सतगुरु जी अगे बेनती कीती, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे, मैं भी बाहर दियां यात्रावां करदा, पर एक दिन सतगुरु मिल पिया। पूरे सतगुरु नूं मिलण नाल जिहड़ा मन दा अंदर सुकून नहीं सी मिलिया बाहर दियां यात्रावां करके, वह गुरु अंगद देव महाराज दे दर ते सेवा और सिमरन करके मैनूं अंदर दा सुकून मिल गया, मन दी शांति मिल गई, मन दा टिका मिल गया, आत्मक सुख जिहड़ा सी अंदर बन गया। पर सतगुरु नूं मिल के, इसलिए जिन्हों मिल के ये कृपा हुई है उदे तो वारे जाइए, सदके जाइए। रात भी इतिहास दे विच असी गुरु कलगीधर पातशाह तो वारे वारे जा रहे सी, जिन्हां ने रात इतिहास सुनिया होवे। असी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वारे वारे जा रहे सी, महाराज सदके जाइए तुहाडे तो। पुछया क्यों? तुसी महाराज सानू रंक तो राव बना दिता। महाराज सतगुरु जी सानू बाणे और बाणी दे रंग विच रंग के, असी तो रंक सी, तुसी राव बना दिता। सानू वो बख्शिशां देतियां जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पात शाही पात शाह। असी तां कायर डरपोक सी, तुसी गिदड़ां तो शेर बना दिता। सतगुरु महाराज पातशाह असी ओ सी जिन्हां नू कोई नहीं सी जानदा पछाणदा, पर अज सारी दुनिया जानदी है पछाणदी है। इन्नी कृपा गुरु कलगीधर पातशाह तुसी खालसा पंथ साज के कीती है। बड़े गुण गुरु पातशाह ने, कवि संतोख सिंह जी ने बड़े गुण गाए गुरु कलगीधर पातशाह दे वारे वारे जाए। भाई नंद लाल जी किन्ना वारे जा रहे हैं,
ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ।

क्यों वारे वारे जाइए? एक तो ये समझ आ गई कि सदा सुख सच है शब्द विचारी, शब्द नाल जुड़ के पता लगा सच है, वो जड़ा सच्चा नाम है सच्चे दा, उदे नाल जुड़ के ही सुख है। जप मन सत नाम सदा सत नाम, मन तू वो सच्चे नाम दा अभ्यास करिया कर, जे तेनू सुख मिल तू चाहुंदा है तेनू सुख मिल जाए। ते जदों उदा अभ्यास कीता फिर रसना हर साध लगी, पहले रसना होर स्वादां विच लगी हुई सी, पहले रसना नू होर रस होर स्वाद चंगे लग रहे सी। ए रसना तू अन्न रस राच रही, ये अन्न रस विच होर स्वादा विच पई सी, पर हुण ये रसना नू हरी दे नाम दा स्वाद लग गया। जदों ये हरी दे नाम दा स्वाद आ गया जां लग गया, अंदर की होया? सहज सुभाए, अंदर सुभा प्रेम वाला हो गया, अंदर दा जिहड़ा सुभा सी वो प्रेम वाला हो गया। ते अंदर की हो गया? अंदर अडोलता आ गई, आत्मक अडोलता भी जिहड़ी सी वो बन गई। जदों इस जीव ने रसना ने हरी दे नाम दा स्वाद चख लिया, सुभावक ही अंदर सहज अवस्था बन गई, इदां भी कह सकते हैं सुभावक ही। जदों इस रसना नू हरी दे नाम दा स्वाद आ गया, जदों इन्हें नाम दा रस चख लिया, उदों ही सुभावक इहदे अंदर आत्मक अडोलता अपने आप बन गई, बनाउण दी लोड़ ही नहीं पई। जिवें सारी दुनिया रब दी भाल दे विच तुरी फिरदी है वी सानू किते रब मिल जाए, कोई किसे तरह का कर्म कर रहा, कोई किसे तरह का, जिन्हें भी फिरके ने भावें वह योगी है सन्यासी है साधु है संत है, भावें कोई जंगलों च भटक रहा कोई पहाड़ों के, हर कोई चाहता है भी मैनू किते रब मिल जाए। पर बाबा फरीद साहब कहिंदे आ भी रब नू मिलण दी लभण दी लोड़ की है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया ना, एवें नहीं कह रहे हो। वो कहिंदे मैं भी लोकां मगर लग के ते रब नू लभण तुर पिया सी जंगलां च, पर जाके पता लगा जदों खुद प्रैक्टिकल किया ते जो अनुभव होया वो कहिंदे मैं हुण दुनिया नू दसदा भी तुसी ना किते लोकां मगर लग जिओ। मैं ते लग के देख लिया, तन सुका पिंजर थिया तलियां खुंडे काग, अजे सो रब ना बहुड़ियो देख बंदे के भाग, हजे उस रब तक पहुँच नहीं हुई। फिर पुछया बाबा फरीद साहब तुहानू समझ की आई? वो कहिंदे जो मैनू समझ आई है वो ये है कि रब नू पाउण दा ख्याल मन दे विचों कढ दिओ, एक मन विचों ख्याल कढ दिओ वी रब नू पाउणा है। की ख्याल ले आईए? कहिंदे ये ख्याल मन च लियाओ भी मैं अपना भांडा सवारना है। ध्यान इस पासे दिओ, ध्यान उस पासे देंदे रहोगे इदां रब नहीं मिलना। अपने अंदर ये ख्याल लैके आओ कि मैं अपना भांडा सवारना है, भांडा सवरेगा उन्हें आपे ही मिल पैना, मैनू मिलण दी लोड़ ही नहीं है। मैं ठीक है उन्हों मिलना है, पर मैं रस्ता गलत चुन लिया, मेरा तरीका गलत है। गुरु नानक साहब जी जे भ्रमण करते हैं तो लोगों नू तरीका ही सिखाते पे है, जे सनातन धर्म के लोगों को गए तो महाराज ने उन्होंने तरीका ही समझाया, जे इस्लाम धर्म के लोगों को गए उन्होंने तरीका समझाया, महाराज कहते आ तरीका है, जुगती समझाई। जे महाराज जोगियों को गए तो जोगियों भी तरीका सिखाया, जिन्हों जिन्हों को भी गुरु महाराज गए उन्होंने सिर्फ तरीका ही सिखाया भी आ तरीका अपनाओगे तो तुहानू बहुती मेहनत भी नहीं करनी पेगी तो परमेश्वर की प्राप्ति भी है। इसलिए बाबा फरीद साहब ने कहा फरीदा आप सवार मैं मिलें,
आप सवारै मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। कहिंदे मैनू और रब जी ने आवाज दे के समझाया तू मैनू जंगलां च क्यों लभदा पिया है तू अन्न छड के क्यों भुखण भाणा रह रहा है तू अपना भांडा क्यों नहीं सवारदा। आप सवारै मैं मिले तू अपना आपा सवार मैं आपे ही मिल पांगा। हुण शीशे अगे खलोते हो शीशे ते धूड़ मिट्टी जमी हुई है तुहानू तुहाडा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हुण तुसीं अपना चेहरा साफ करोगे कि शीशा साफ करोगे। असीं शीशे अगे खलोते हाँ ना बिल्कुल धूड़ मिट्टी जमी हुई है सानू उहदे ते चेहरा अपना दिसदा नहीं ते मैं अपना मूँह साफ करी जावां मैनू की लोड़ है मैनू वह शीशा साफ करन दी लोड़ है ते उहदे विच मेरा मेरा स्वरूप आपे ही दिस पैणा है। साढ़े अंदर धूड़ जमी हुई है मिट्टी जमी हुई है कालख अंदर जड़ी है वह भरी पई है। इस कालख नू अंदरों धोना है अंदर दी विकारां दी मिट्टी नू लाउणा है शब्द नाल जुड़ के जदों भांडा साफ हो गया उन्हें आपे ही मिल पैणा है सानू। इसलिए महाराज जी कहिंदे आ कि तू शब्द नाल जुड़ शब्द का अभ्यास कर जदों तेरी रसना हरी दे नाम का स्वाद चख लेगी। असी रोज पाठ कर रहे हैं कि साड़ी रसना नू रस आ रहा है स्वाद आ रहा है नाम का शब्द का रस आ रहा है। जे तो कह रहे हैं भी नितनेम करके स्वाद आ गया फिर तो स्वाद वाकई आया शब्द सुन के कीर्तन सुन के स्वाद आ गया पाठ सुन के स्वाद आ गया कथा सुन के स्वाद फिर तो वाकई रस आया। तो कई बार बंदा कहिंदा कीर्तन सुनिया स्वाद नहीं आया क्यों नहीं आया पाठ करके स्वाद नहीं क्यों नहीं आया क्योंकि तेरी रसना हजे होर होर स्वादां विच पई हुई है स्वाद कितों आएगा। ये अन्न रस विच जड़ी लगी हुई है इनू अन्न रस विचों कढ के हरी दे नाम रस नाल जोड़ना है। तो जदों इस रसना नू हरी दे नाम दा स्वाद आ गया आ फिर कहिंदे सुभावक ही अडोलता अंदर बन जानी है बनाउण दी लोड़ ही नहीं ना कन्ना च मुंदरां पाउण दी लोड़ है ना पुठे लटकण दी लोड़ है ना तुहानू जंगलां च जाण दी लोड़ है ना तीर्थां दे कंडे ते बहण दी लोड़ है। बस की करना है तुहानू शब्द दा अभ्यास करना है सुरत ला के। जदों सुरत ला के शब्द दा अभ्यास करोगे फिर रसना हर साध लगी रसना नू हरी दे नाम दा स्वाद लग जाएगा। जदों लग गया सहज सुभाए सुभावक ही अंदर अडोलता बन जानी है तुहानू खुद नहीं पता लगना। तुसी बिसमाद विच किद्दां चले जाऊंगे तुहानू पता ही नहीं लगना। बस लोड़ है हरी दे नाम दा रस स्वाद चखण दी लोड़ है उहदे विच देरी है। देरी रस विच नू प्राप्त करन विच नहीं देरी मेरे अंदर है कि मैं उस रस तक पहुँच नहीं पा। रस ते है स्वाद ते है असी रोज नितनेम कर रहे हैं रात भी ये बेनती कीती है जो समझ विच आई गल असी रोज नितनेम कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं पर कई बार असी कहने भी इन्ना पाठ करदे हैं इन्ना पाठ करदे हैं मन नहीं टिकदा इन्ना पाठ करदे हैं पाठ करन दा फल नहीं मिलदा फिर कसूर किदा कढ रहे हैं अपना कढ रहे हैं कि शब्द दा कसूर कढ रहे हैं भी शब्द ते मैं बड़ा पढ़दा बड़ा पाठ करदा पर मैनू फल नहीं मिलदा इहदा मतलब कसूर मेरा है मैनू हजे पाठ करना ही नहीं आया मैनू हजे नितनेम करना ही नहीं आया करते रहा पर करके भी मैनू नितनेम करना नहीं आया। हाँ जिस दिन आ जाएगा कि मैनू नितनेम करना पाठ करना उस दिन रस भी आ जाएगा उस दिन स्वाद भी आ जाएगा उस दिन फल भी मिल जाएगा। इसलिए महाराज जी कहिंदे आ तू
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ

जानी शांत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र।

तुमते हो ऐसो, तुमरी गत मित तुम ही जान। नानक दास बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास है हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सुमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सुमरै करनो निदा बिताए। सब थाई हुए सहाय दसवा पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दे दार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई देख वाही देख के अंडठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान

परिवार कथा विचारा से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पैटा बंदर प्रवान करनी आम यात्रा वास

सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सुनि कै गुरु नानक ली ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरे है करनो निदा बिरदाए सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ विदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग बाही देख के अंडिट कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए फुकरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े अनारियां नाल चराई गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुआसां नाल निवाही ते नाल दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसी हरियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखा।

कोए ना को हो आ ना को होए जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात जैनों देनों करके कीती रात खसम विसारी ते कम जात नानक नावें बायस नात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरमन सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत अमरी रहरास रहाओ हर जन के बड भाग बड़े रे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम लें त्रिपता सही मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवें उदम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जन्न पिता लोक सुत बैं था कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाही ठाकुर काहे मन पाओ करया उड़े उड़ आवे सैकों सां तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया।

जाइए तेरा अंत ना पर गया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पार। सब दया वही तुझी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जीहा का दातारा। हर ते अब हो संतो जी सब दुख विसार नहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार परम बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए जैना हर त्याया जी। तेना टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिनका पौ सब भगवासी जिन से बया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी। भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तप तापहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत फले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी। तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया वो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खे विजोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल। जिसनो तू जान है सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए।
तुद में दूजा अवर ना कोई, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े फैरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजों मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक नचे तस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जैन तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेलो साध संगत भाजे केवल नाम, श्रंग जाम लाख पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो, जप तप संजम धर्म नाक माया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म नाक माया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, बादशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी क्रोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रिन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मार तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिए, आभाद मुझे उवरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करि हो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हरे, साहिब संसहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम्हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, नौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत,
भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने, जाब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जाब आ कर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दहे धर सबहू, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीरा नाथ संभ, ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको पेवन बावत बेदा, ताको कर पाहण अनुमानित, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक वयो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, अजुगा स्वरूप स्वयंपव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तुझे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तान जहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सव होई, दुष्ट शाह शवै सके ना कोई।

ही सर्वठ मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुपीद कहें हमें एक ना जान्यो श्रीयस पाण कृपा तुम भी कर

राजेयस् गोविंदास्तोहा। रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दों तंगाभो हरी केरा।

पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलना समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा क्यों नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शान सुख मने आए बसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतो शबतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तिद घर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तस कोआ तित खर अन्नहद बाजे आनंद सुनह वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते बनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणि महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो एहे वस्त तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए

शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसह में रही अरहि।

Dois crudinhos. Eco Onkar Satnam Karta Purukh Nirpo Nirvair Akal Murat अजूनी सैभं गुरुप्रसाद तुद्ध आगैरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा गुरु नानक

मैं सूकने कोई न जाने तुमरा अंत उचेते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमते होए स्वाग्या तुमरी गात मित तुम्हें जानी नानक दास सदा।

बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका

गौड़ी पूर्वी माला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टैर की बेलाइया खाट चलोला आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सवै नारे मर गुरु मलकार सवारे रहाओ हे संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी विसै जगाए पिया वै रस कथ कथात न जानी जा कवाई सोई बिहाजुअर।

कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिधर गुण गावे सर्बा तम जिन जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे गुण बरनचार।

आद अंत लिव लागतुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने हो कब काल सुज

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की पिखे भगत पै पर पूर हृदय उच्चरे करतारे गुर गोहर दरियाओ पलक डुबनते तारे नानक कुल निमर अवतरियो गुण करतारे उच्चरे गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दृद्र पर हर परे चित चितवो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तकूं तेरे हुकम पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करण।

आद जन काद जुग लग, तन तन गुर तन जन्म सक्यत पलो जग, पातालपुरी जयकार तुन कब जन

तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच पूत बस कीने जमत नात रास।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सर्वे कायनात दे सांझे रहबर जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर समरथ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान साध संगत जी आप जी बड़भागे हो जो अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया का अज का पावन मुखवाक सोरठ राग अंदर पंजवें पातशाह शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज संगीत दे दूसरे घर विच अष्टपदियां दे रूप विच बख्शिश करते ने जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 641 अते 642 उपर सुभायमान है। सतगुरु जी कृपा करना अपने हुक्म अनुसार जीवन जीउण दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए।